0: भाडर बाबा एक से छामी चाल दलो चो खप्पर में कद नोंग मो
1: खट्टारे भाई
0: फेरी नोंग जी खप्पर स्टार्ट आदनी
1: लोद्रे
2: चियाको छोरी चियाको अगाडि जङ्गा उर्खा मौजा
0: जे बच्चा मेलाम फेन बास्ना गए
1: है
0: अनि हाल सुगर ड्याडी चु है

Piares na zarabia que borrón el aquí, man se extendió la naprajón el aquí, peleganda aquí, afuera con titorn el aquí, a que rat me hilao vos se hone el aquí, me ne bola e que chote se fight, super teeth che baja meri chandigar que flight, schedule thoda tight, kati aditya jhoot bolne ki bhi ek height, kaise bataun life chuto se bani, peer se hair ke jo goto se bani, meri na kisi insaan se bani bani to bas kabristan ke bhooto se bani, main kabhi bahut zyada sad kabhi bahut hi funny, mere goyat ke back kaan टिफनी मेरे और चीत के बीच कोई बट इफनी चुतियों की टिप्पणी पे न करो टिप्पणी तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर कभी सेक्स तो कभी ज्ञान बांटता फिर जो भी चलता है उसकी गांठ फाड़ता फिरूं हिट पे हिट मैं मारता फिरूं तीन रात लगातार मैं जागता फिरूं भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही उसे मैं जानने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, क्या हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

छोड़ मुझे दिल मेरा पत्थर का वेट नहीं कर सकती गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम क्लियर है विजन मेरी यारों नहीं मज़ूम ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम

0: मैं किस नहीं करता, वो देती मुझे हेड शॉट, मिस नहीं करता। पता है फाड़ के हाथ में भी दे देगा, तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। आम हासला A1, lifestyle A1, ए मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, क्योंकि बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल, कटोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून, दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।

आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट।

वाला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.